पीआरबीटी पुरुष आवाज में 01600-33452 पीआरबीटी 6054-066 सीआरबीटी महिला आवाज में 01600-33453 पीआरबीटी 6054-066 सुझाव तथा प्रतिक्रिया का संपर्क 98470-47077 उत्पादक तथा वितरक बिंदुदासिनी म्यूजिक प्राली काठमांडू।

पीआरबीटी पुरुष आवाज में 01600033452 पीआरबीटी 6054066 सीआरबीटी महिला आवाज में 01600033453 पीआरबीटी 6054066 सुझाव तथा प्रतिक्रिया का संपर्क 98470 4707 उत्पादक तथा वितरक बिंदुदासिनी म्यूजिक प्राली।

पीआरबीटी पुरुष आवाज में 01600033852 पीआरबीटी 6054066 सीआरबीटी महिला आवाज में 01600033853 पीआरबीटी 6054066 सुझाव तथा प्रतिक्रिया का लगी संपर्क 98470 47077 उत्पादक तथा वितरक बिंदुदासिनी म्यूजिक प्रणाली।

म्युजिक प्राइम मार्फत सर्वत्र बजार अनौठो परीक्षा सीआरबीटी 01600 21917 सीआरबीटी 6052880 2

पीआरबीटी पुरुष आवाज में 01000033452 पीआरबीटी 6054066 सीआरबीटी महिला आवाज में 01000033453 पीआरबीटी 6054066 सुझाव तथा प्रतिक्रिया का संपर्क 98470 4707 उत्पादक तथा वितरक बिंदुदासिनी म्यूजिक प्राली काठमांडू।